0: रही है
1: लाइका रेडियो।
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 पाउंड्स।
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757। ग्रीन्स बाय डैनियो, प्राइम लोकेशन,
2: हाई अप्रिसिएशन
3: इन दुबई।

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
5: पूछ लो सर।
4: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
5: फरवरी सर।
6: सर साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
7: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस।
4: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा।
0: डाउनलोड द Leica रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज। This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

मन बुद्ध, मन्ने सगल पौन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो स

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस।

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइक अ गोल्ड 2 गोल्ड 2 ऑन लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप लाइक अ रेडियो .com एंड एलेक्सा प्ले लाइक अ गोल्ड 2 गोल्ड 2 गोल्ड 2 पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स।

0: Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.

good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: सोमवार और वो भी श्रावण मास का सोमवार 2026 के अगस्त महीने की 24 तारीख और वक्त वही जब आप और हम मिला करते हैं और संगीत के सुहाने सफर पर मिलके चला करते हैं। तैयार हैं आप? माय नेम इज रवि शर्मा और भर भाई दोपहर में 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तैयार हैं आप साथ निभाने के लिए संगीत के सुहाने सफर पर जाने के लिए?
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Leica Radio across the Midlands.
0: शुभारंभ मधुर आवाज से और ये मधुर आवाज है सुमन कल्याणपुर की और साथ में जुड़ जाए रफी साहब तो फिर यही कहेंगे कि तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अब अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से क्योंकि तुमको हमने पुकारा है बड़े

0: लिखने वाले लिख देते हैं, विचार नहीं करते भाई। सोचा क्या, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। पहले तो हम सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि भाई महिलाओं की लेडीज के तो बालम होते हैं, मर्दों के भी बालमा होते हैं, होते होंगे भाई जरूर। तभी तो कहा जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। और बालमा का भाई इतना बड़ा कारोबार है कि हर गली में उसका घर हो, जिधर से भी हम गुजरे। कितने घर होंगे, जिस गली में तेरा घर होगा उसी गली से गुजरेंगे। हर गली में घर बनवाना पड़ेगा, और नहीं बनवा सके तो फिर किसी के घर पे कब्जा जमाना होगा। कब्जा तो समझते ना आप, ठीक है साहब। बोले कब्जा नहीं समझते, कब्जी समझते हैं। छोड़ो यार, सुबह सुबह शुरुआत हो गई है, सप्ताह की शुरुआत हो गई है, दिन की, और भाई शुरुआत हो गई है मनोरंजन की। और भर भाइयों क्या किया वीकेंड पे, बिजी रहे? हाँ, हम भी व्यस्त रहे भाई, खाली कौन रहता है यहाँ। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और कभी कभी तो भाई सोचने में भी व्यस्त रहते हैं। तो बहुत काम किए होंगे, बहुत प्रॉब्लम सुलझाई होंगी जो अधूरे रह गए हैं, अब म्यूजिक सुनते सुनते भी सुलझाएंगे। राइट, सबसे पहले तो मैं एक और खबर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि दुनिया भर के क्रिकेट कप्तानों ने, जिनमें भारत के कपिल देव और सुनील गावस्कर भी शामिल है, फॉर्मर कैप्टन्स, उन्होंने मिलकर के एक संदेश भेजा है पाकिस्तान को इमरान खान की सपोर्ट में, कि भाई वो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जो है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए, देखिए वो गोल्ड भी जीता था, टीम को चैंपियन बनवाया था, और देश के लिए भी कुछ किया, तो उन पर इतना वो तो करें कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, उनका परिवार चिंतित है, तो उन्हें डॉक्टरों से और उनके परिवार वालों से मिलने की सुविधाएं जो दी जाएं। तो दुनिया भर के कैप्टन, जो क्रिकेट के कैप्टन हैं, पूर्व कैप्टन, उनमें ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, भारत के भी हैं, और दूसरे देशों के भी, इंग्लैंड के भी हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा है पाकिस्तानी सत्ता को कि भाई इमरान खान साहब को ये सुविधाएं प्रदान की जाएं, और ये जो है मसला उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है उस पर गौर किया जाए। इसके अलावा भाई ब्रिटिश प्रधानमंत्री रवाना हो गए यूक्रेन, प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है, और क्या उद्देश्य है आगे चल करके चर्चा करेंगे। फिलहाल तो लेट मी टेल यू हाउ द पाउंड इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडियन रूपी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India, SBI UK are telling that by today's rate is very attractive if you want to send money to India. Yes, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। एक पाउंड के बदले they are giving 130.1 rupees. 130 रुपए और 10 पैसे का रेट चल रहा है। You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786028065. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ 1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for $2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99। फेल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर Travel Mantra.
9: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
12: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
13: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
14: You know how fans shout at football matches?
15: Oh, wake up!
14: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
16: लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन।
17: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
18: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: लौट आइए संगीत की ओर और सुनिए सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफी का स्वर।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: और भन भाई लाइका गोल्ड पर अब आप खबरों की ओर रुख करेंगे। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस लीडर और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान को लेकर उन पर आज एक तीखा हमला बोला है। योगी जी ने कहा कि राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर के तौर पर देश की डेमोक्रेसी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। योगी जी ने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया है कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़कर बाहर आ जाएं। देश उनसे राहुल गांधी के रूप में बहुत अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में अपोजिशन लीडर है वो, उसके रूप में देश आपको लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बनाता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आज सोमवार को विधानसभा में उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस ट्रैवल योजना के विस्तार का ऐलान किया। अब पात्र महिलाएं शहरी इलाकों में चलने वाली एक्सप्रेस और डीलक्स सरकारी बसों में फ्री यात्रा के मुफ्त सफर कर सकेंगी। इंटरनेशनल खबरों में अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक हमले की धमकी पर ईरान की ओर से एक बयान आया है। अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने की वार्निंग दी, जिस पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने रिएक्ट किया है। आईआरजीसी ने, आईआरजीसी की स्पोक्स पर्सन वहां के उनके प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबीबी ने कहा है कि इस तरह की धमकी देना एक तरह से अमेरिका की नाकामी है। दरअसल अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेंसन ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने वाला है, माली अटैक। भारत से आने वाली अन्य खबरों में महाराष्ट्र के अमरावती में आज सुबह जिला महिला अस्पताल की NICU यानी चाइल्ड यूनिट में आग लगने से 3 नवजात शिशुओं की, नए जन्मे बच्चों की मौत हो गई है। अमरावती के जिला सर्जन डॉक्टर विनोद पवार ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह करीब 3:30 बजे मिली। दमकल कर्मियों ने 6 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 3 बच्चों को निकालने में वो नाकाम रहे। और एक खबर गिनी से, गिनी की राजधानी कोनाक्री में भारी बारिश के बाद कचरे का एक पहाड़ ढहकर आसपास के घरों पर जा गिरा। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 22 अन्य जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा शहर के दार इस्लाम इलाके में स्थानीय समय अनुसार रात करीब 2 बजे हुआ। गिनी सरकार के मुताबिक भारी बारिश के बाद कचरे का ढेर अचानक ढह गया, अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। न्यूयॉर्क से, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से खबर आई है। वहां ब्रुकलिन में गोलीबारी की एक घटना में एक इंडियन सिटीजन की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने इसकी पुष्टि की है। दूतावास ने लिखा है कि हमें भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह के असमय निधन की खबर से बहुत दुख हुआ है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में उनकी जान चली गई। भारतीय कॉन्सुलेट ने आगे लिखा कि इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं और दिल से सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। दूतावास परिवार के संपर्क में है और उनकी हर संभव मदद कर रहा है। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला, फाइनेंशियल अटैक करने वाला है। यह खबर हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक यह खबर क्रिकेट से जुड़ी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को क्रिकेट के जाने माने पूर्व कप्तानों ने एक चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान के फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान की हेल्थ को लेकर के क्रिकेट जगत के 21 फॉर्मर कैप्टन ने पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इनमें कपिल देव और सुनील गावस्कर भी शामिल हैं, जिन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल ले जाकर मेडिकल बोर्ड से उनकी जांच कराने का निर्देश दिया था। इस बोर्ड में इमरान खान के प्राइवेट डॉक्टरों के साथ उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान को भी शामिल किया जाना था। अदालत ने उनके परिवार से साप्ताहिक मुलाकातें भी बहाल की थी। पूर्व कप्तान ने दावा किया कि इमरान खान को अस्पताल में केवल कुछ घंटे रखा गया और उनकी जांच अदालत के निर्देश अनुसार नहीं हुई, बल्कि सरकार ने अपनी ओर से एक नियुक्त टीम जो है कर दी और टीम ने उन्हें मेडिकली फिट घोषित करके वापस अडियाला जेल भेज दिया। हम उस देश के कानूनों में दखलअंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन इतनी दरखास्त करते हैं, हमें अपने बयान का जवाब ही नहीं चाहिए। बस वो एक फॉर्मर वजीर आजम है और वो एक बड़े कामयाब क्रिकेटर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी उचित देखभाल की जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। चिट्ठी लिखने वालों में माइकल अथर्टन, एलेक्स ब्लैकवेल, एलन बॉर्डर, माइकल बियरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, सुनील गावस्कर, ली जर्मन और एडम गिलक्रिस्ट, डेविड गॉवर, किम ह्यूजेस, नासिर हुसैन, क्लाइव लाइड, कपिल देव, यानी बड़े बड़े कैप्टन जो है, बड़ी बड़ी टीमों के कामयाब कैप्टन जो है, मशहूर खिलाड़ी, वो शामिल है। अब बात क्रिकेट की चली है तो आपको बता दें कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। भारत ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया था और इस समय उनका स्कोर जो है, स्कोर कैसा, बारिश के कारण मैच रुका हुआ है, लेकिन फिर भी बता दें भारत ने 8 विकेट गंवाकर 475 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है। श्रीलंका ने अभी बैटिंग करनी है। ये थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त होते हैं।
0: ये है लाइका रेडियो, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: हरियाणवी लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम कॉपी लगता है उस लोक गीत की ये गाना कि मेरा दामन शिमादी हो नदी के बीरा वाले सॉन्ग, कभी वो भी सुनवाएंगे आपको भाई। ओरिजिनल है, बहुत लोक गीत है, उसे कोई लिखता नहीं है, उसकी कोई धुन नहीं बनाता है, वो तो अपने आप भाई गाँव की महिलाएं या गाँव के बच्चे भाई खेलते कूदते जीवन गुजारते हुए कुछ शब्दों को अपने आप जोड़ लेते हैं, जुड़ जाती है और गीत बन जाते हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Ye hai Leica Radio.
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel. Yaad dila rahe hain aapko दुबई की, भाई दुबई के लिए जाने वाले ट्रेवल एजेंट है वो साउथहॉल ट्रेवल, इज नोन फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टैक्ट साउथहॉल ट्रेवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथहॉल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: हॉलीडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथहॉल ट्रेवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलीडे पैकेजेस। विजिट southalltravel.co.uk। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio. One performer.
4: Countless personalities.
5: A
3: whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK tour 2026.
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: It's December, thand ko bolo goodbye.
9: Join Maharaja Tours on a 14

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है और लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में और लाइका रेडियो मिडलैंड्स के कार्यक्रमों में चिंतन का पड़ाव आ गया है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के विचार में हम आलेख शामिल कर रहे हैं ग्रीन फोर्ड से, श्रीमती सोनिया शर्मा जी का भेजा हुआ। तो प्रस्तुत है आज का चिंतन।

0: कहानी है आचार्य रामानुज की जीवन की। ज्यादातर भाई हमारे चिंतन में सच्ची घटनाएं होती हैं, पर कुछ एक ऐतिहासिक या महापुरुषों के जीवन से जुड़ी, या फिर भाई कभी कभी जो है पौराणिक कथाओं से भी हम चुन लेते हैं। सोनिया जी ने जो लिख करके भेजा है वो कहती है कि आचार्य रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लें, अपना शागिर्द बना लें, अपना अनुयायी बना लीजिए, मैं साधना करके भगवान को पाना चाहता हूं। आचार्य रामानुज ने उससे कहा, परमात्मा की बात तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले ये बताओ क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं नहीं महाराज, मैं प्रेम प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं मोह माया से बिल्कुल विरक्त होकर के आपके पास आया हूं। सोच लो किसी से तो किया होगा। नहीं महाराज जी, बताया ना, मैं प्रेम के झंझट में कभी नहीं पड़ा, मेरा तो जिंदगी में एक ही लक्ष्य है, मोह माया को त्याग कर परमात्मा को पाना। आचार्य रामानुज ने फिर उससे कहा, देख भाई सोच ले, याद कर ले, फिर बता कभी किसी मित्र से, अरे परिवार में किसी से, मां से, भाई से, पत्नी से, बहन से, किसी से भी प्रेम का बर्ताव, प्रेम किया कि नहीं किया? वो आदमी बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ जवाब देता है, मैं फिर बताऊं आपको महाराज जी, मैं कभी इस सांसारिक माया जाल में फंसा ही नहीं, प्रेम से मेरा कभी कोई दूर का भी वास्ता नहीं रहा। इस पर रामानुज बोले, फिर तो भाई मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। क्यों महाराज? क्योंकि तुम में वो योग्यता नहीं है, तुम शिष्य बनने के काबिल ही नहीं हो। तुम कहते हो तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं और तुम भगवान को पाना चाहते हो। जानते हो हमारे ग्रंथ, हमारे महापुरुष कह गए हैं, बता गए हैं, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। अगर आपको प्यार करना नहीं आता, अगर आप परमात्मा के बनाए किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकते, उसकी प्रकृति से प्रेम नहीं कर सकते, जीव जंतुओं से, और भाई उसकी रचनाओं से प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर आप भगवान को कैसे पाओगे? प्रेम परमात्मा की प्राप्ति का सरल और सहज रास्ता है। इसलिए भाई पहले प्रेम करो, उसके बाद ईश्वर के प्रति जो आप इच्छा रखते हो ना, वो इच्छा प्रेम बनकर ही आपको प्रभु से मिलाएगी। प्रेम के अभाव में लोग नफरत करेंगे ना, झगड़े करेंगे ना, लड़ाई करेंगे। भाई जहां प्रेम नहीं है वहां और क्या हो सकता है? और फिर उसका नतीजा भी आप जानते हैं।
1: चिंतन चिंतन,
0: भगवान को पाना है तो प्रेम करो, संतों के संपर्क में जाना है तो प्रेम करो, क्योंकि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो।

प्यार कर ले। भाई ईश्वर को प्राप्त करने का सरल और सहज रास्ता प्यार कर ले। प्रभु से तो प्यार कर ही कर, प्रभु की रचनाओं से, उसके प्राणियों से, जीवात्माओं से, प्रकृति से, इस सृष्टि से।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें श्रीमती सोनिया शर्मा ने ग्रीन फोर्ड से भिजवाया। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी। जो गीत हमने चिंतन के साथ सुनवाया, दैट वाज प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में ये गीत लिया था हमने, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से। और बहनों भाइयों, चिंतन को समेटने से पहले याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज भाई कुछ लोगों के जन्मदिन है, उन्हें याद करेंगे, कुछ की पुण्यतिथि भी है। एक बड़े गर्व से मैं बताना चाहता हूं, एक नाम लेना चाहता हूं, स्वतंत्रता सेनानियों में बड़ी कम उम्र के नौजवान, क्या लोग थे वो दीवाने। अब सैटरडे को 22 तारीख को भारत वंशियों ने बड़ी धूमधाम के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, याद किया शहीदों को, श्रद्धांजलि दी उन लोगों को जिनकी बदौलत हम आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं। और भाई ये एक ऐसा उत्सव था जिसमें भारत के लगभग सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता था। स्टॉल लगे थे, पंजाब के छोले भटूरे, हरियाणा की जलेबियां, हिमाचल की नाटी, और भाई वहां के खान पान और नृत्य संगीत, हर राज्य का, कथक से लेकर ओडिसी, भरतनाट्यम, ये मस्ती और ये सेलिब्रेशन भाई, जिनकी बदौलत उन शहीदों को याद किया गया। और भारतीय उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर ने ध्वज फहराया, तिरंगा लहराया, सबने मिलकर के जनगणमन गाया और वंदे मातरम का भी गान हुआ। शानदार प्रोग्राम, सुबह से शाम लगभग 4 बजे तक खान पान, नृत्य संगीत, मेलना जुलना, भाई एक बहुत बड़ा मेला था, कई हजार तो कारें पार्क थी, वहां दिखाई दे रही थी। मैं तो स्टेज पर होने के कारण भीड़ में नहीं जा सका, लेकिन दूर से सर ही सर नजर आ रहे थे, चारों तरफ स्टॉल लगे थे। तो भाई बता दूं आपको कि कल के परसों के कार्यक्रम में यानी 22 तारीख के स्वतंत्रता समारोह में बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात हुई, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। भाई जो मिले वो कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, पर वो भी ऐसा ही मिलना हुआ भाई, स्टेज से दूर से हाथ हिला करके मैंने अभिवादन स्वीकार किया, उनका उनको स्वागतम कहा। आज हम याद करना चाहेंगे, नाम सुना आपने शिवराम राजगुरु का, अरे वो नौजवान जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। राजगुरु, भगत सिंह का नाम तो सुना है ना, सुखदेव थापर का नाम भी सुना होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उम्र क्या थी उनकी, 21-22-23 साल के ये नौजवान देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लेते हैं। आज राजगुरु का भाई क्या जयंती है उनकी, आज उनका जन्मदिन पड़ता है। 1908 में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। श्रद्धा से नमन करते हैं हम उन शहीदों को जिनकी बदौलत स्वतंत्रता मिली, और हर साल भाई जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो उन्हीं को समर्पित है। आइए चिंतन समेटते हैं। और वैसे भाई और भी हैं कुछ जन्मदिन मनाने वाले नाम, जैसे कि अदिति शर्मा, ये एक्ट्रेस हैं, और गीता माधुरी, वैसे तो अपने बाली भाई आएंगे, वो लेके आएंगे सबकी जन्म कुंडली, लेकिन भाई अगर आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। पूनम यादव एक क्रिकेटर हैं, उनका भी आज जन्मदिन पड़ता है। दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेटर हैं, ये भाई महिलाओं की क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। दीप्ति शर्मा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। इनके अलावा भाई और भी बहुत सारे लोगों के जन्मदिन है, लेकिन मैं सिर्फ अपने श्रोताओं के परिवारों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जिनका भी जन्मदिन है उनके लिए जो गीत पसंद आए लेकर के उन तक पहुंचा देना मेरी ओर से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफरिंग 130.1 रुपीज फॉर 1 पाउंड, एक पाउंड के बदले 130 रुपए 10 पैसे वो दे रहे हैं, रेट अच्छा है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भिजवाने के लिए इस सेवा का फायदा उठाइए। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy, since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
9: Live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: लिस्टर नवरात्रि ની ધમાકેદાર રાતો માટે થઈ જાવ રેડી KDR ઇવેન્ટ્સ એન્ડ બીચ પ્રમોશન્સ પ્રાઉડલી પ્રેઝન્ટ્સ નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ 2026 11th to 20th ઓક્ટોબર લાઇવ ફ્રોમ ઇન્ડિયા ગરબા ડાંડિયા મ્યુઝિક એન્ડ ફુલ ઓન ફેસ્ટિવ વાઇબ્સ એવરી નાઇટ ફ્રોમ 7 PM એટ અવંતી ફીલ્ડ સ્કૂલ લિસ્ટર ટિકિટ્સ જસ્ટ £5 થી સ્ટાર્ટ બુક યોર ટિકિટ્સ નાઉ ઓન ટિકિટ સોર્સ ઓર કોલ BJ 07957477330 રેડિયો પાર્ટનર લાઇકા રેડિયો
12: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
12: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
12: high appreciation,
13: in Dubai.
1: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
14: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
1: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.
15: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.

0: Leica Extra podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
1: Leica Radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Making summer feel better on the Leica Radio Network.
2: लौट आइए संगीत की ओर और आइए ये दोस्ताना भाई गीत है आपकी और हमारी दोस्ती के नाम कर रहे मोहम्मद रफी और मुकेश जी भाई जो गाना इन दोनों ने मिलके गाया वो गाना दिलों पर छाया बार बार लोगों ने सुना और सराहाया सॉन्ग आपकी हमारी दोस्ती के नाम

0: क्या बात है भाई, दोस्ती इसी को कहते हैं, अपना जो कुछ भी है सब आधा आधा है। कहाँ होता है ऐसा? मुझे पता है हमारे यहाँ भाई स्कूल टाइम में ना ये नियम था, हम जैसे जा रहे हैं सड़क पर, रास्ते में कोई चीज पड़ी मिल जाए तो जिसको मिलेगी साथ चलता हुआ दोस्त उसमें आधा हिस्सा ले लेगा। ये एक यूनिवर्सल कानून समझा जाता है भाई, कोई चीज मिले तो दो दोस्त जा रहे हो, तीन जा रहे हो, तीनों बांट लेंगे आपस में। एक दिन मैंने देखा मेरा एक दोस्त था, मैं बस से उतरा लोकल बस स्टॉप पर, मेरा एक दोस्त मूंगफलियां खरीद रहा था, मेरे साथ तीन चार लड़के और भी सारे दोस्त मिले तो जाकर के उससे हाथ मिला, सुना भाई क्या हाल है। वो मूंगफली वाले को कहता है, वो तोल ही रहा था अभी मूंगफली, कहता है ओ भाई तो अपनी मूंगफली वापस रख ले। बोला क्या हुआ साहब? अरे रख ले वापस यार, ये आ गए हैं कमीने, अब मेरे हिस्से में तो दो चार ही आएंगी, सब बट जाएंगी। मतलब भाई वो कमीने दोस्त भी याद आते हैं यार। क्या कहने, लीजिए साहब जो अपना जो कुछ भी है आधा आधा है, और बांट ले। एक चीज और है बांटने की, खुशी बांटे, हंसी बांटे, बेबसी भी बांटे भाई, सुख दुख साझे हो जाए तो फिर सुख ही सुख रहे, दुख तो भूल जाए। Win with Jamin Foods. एक कंपटीशन चल रहा है हमारे यहाँ, नोट कर ले, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और रक्षाबंधन के त्योहार पर लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल बाय गिविंग अवे अ बॉक्स ऑफ ट्रीट्स बाय Jamin Foods. Jamin इज रेनाउंड फॉर माउथ वाटरिंग रेंज ऑफ नमकीन, पिकल्स, मुखवास, पापड़, सो मेनी वेराइटीज भाई फूड में, प्लस एक्साइटिंग रेडी मील लाइक खिचड़ी, पोहा, शीरा, पाव भाजी एंड वेज बिरयानी एज वेल। सो रेडी इन जस्ट 5 minutes by adding hot water, jaminsnacks.com, इस पर आप जा करके और जानकारी ले सकते हैं। अब कॉम्पिटिशन में भाई ये एक हम जो दे रहे हैं इनाम बॉक्स ऑफ ट्रीट्स बाई Jamin Foods, उसे हासिल करने के लिए कॉम्पिटिशन में आपको क्या करना है? सिंपली सेंड अस द वर्ड लव यू Jamin, JAIMIN, कैपिटल में लिखिएगा ये शब्द, ये नाम। क्या लिखना है आपको? लव यू Jamin, वन लक्की पर्सन विल बी नेम्ड, गोइंग टू एड फॉर पर डे वन द प्राइज विनर, हर रोज एक तो भाई ये होगा। चलिए तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आगे चल के, फिलहाल जुड़े रहिएगा हमारे साथ। रक्षाबंधन का त्योहार कब है इसको लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, कब है भाई? बात यह है यार, जिस दिन बहने आ जाए राखी लेके उसी दिन मना लो, जिस दिन राखी आप तक पहुंच जाए। लेकिन एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द काल गणना, और भाई यहाँ इंग्लैंड में जो कहते हैं वो 4 सितंबर को है, तो बहनों को बता दिए जिएगा कि 4 सितंबर को है, उससे पहले पहले आपकी राखी पहुंच जानी चाहिए वरना पैसों में कटौती हो जाएगी।
1: सिर्फ 4 दिन बाकी, रक्षाबंधन मनाइए अपने Jamin Foods के साथ। Jamin Foods, रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

भाई एक भूल सुधार कर लो, 4 सितंबर को तो जन्माष्टमी है, 27 अगस्त को है राखी, 4 दिन बाकी है तो 27 अगस्त को राखी है, नोट कर लीजिए।

0: भाई गीतों को जब थोड़ा बहुत सुनाई पड़ता था वह शब्द समझ में आते थे, हम उठ पटांग गाते थे कैसे के भैया मेरे लाठी से बंदर को भगाना, भैया मेरे राखी। राखी का त्यौहार भाई फिर नोट कर लीजिए, वैसे भारत में कई जगह 28 अगस्त को ये मनाया जाएगा पर यहाँ यूके में कहते हैं कि 27 अगस्त को आप बहन को कह सकते हैं कि वो राखी लेके आ जाएं। राखी का त्यौहार यूके के समय के अनुसार दे से दैट इट इज ऑन 27 अगस्त। 4 सितंबर को जन्माष्टमी है और मैं उसमें कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसी समय जब मैं बोल रहा था तो मुझे स्टूडियो में आकर के खुश बताने आई कि आप फिलहाल रुक जाओ सबर करो, धीरे चलो। राखी की बात करो, रक्षा जन्माष्टमी की बात करो, फिलहाल भाई जेमिन का कंपटीशन कैसे होगा, किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं आप, क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल उसे न्यू समझिए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है और आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम।
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स। ये है
2: लाइका रेडियो
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a Extra podcast update.
4: आपको बता दें भाई, हमारा नया एपिसोड आ गया है लाइका एक्स्ट्रा पर और उसका टाइटल है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट शोकेस, होस्टेड बाय दीप राजा। जरूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स। लाइका एक्स्ट्रा।

0: Hazar baate kahi zamana.
1: My name is Deep Raja and I do the weekend the breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: Currency rates. नोट कीजिए भाई, आज लम्फाई वाले क्या रेट दे रहे हैं पाउंड का. फॉर इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 130.46 रुपीस, पाकिस्तानी रुपए 378.66, श्रीलंकन रुपए 448.71, बांग्लादेशी टके 166.93 और एक पाउंड के बदले अफगान अफगानी दे आर गिविंग 89.14.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 108.55 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica
4: Radio. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
9: Southall Travel can take you there.
10: Southall Travel. At all protected.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box, and you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box, celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
4: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia aur Thailand, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets aur beautiful temples, phir Pattaya aur Coral Island ka maza. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana aur amazing excursions, sab included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154 846.
5: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
0: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound
0: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
3: Zembe Productions, supported by Rianne's Music.
0: Official radio partner, Leica Radio, Greater Manchester.
6: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to check my...
7: Hey, boy!
8: Coast Guard, we're stuck.
9: Okay, help's on its way.
8: Hold on, mate.
10: Shoes, tied, phone.
8: Back before dark, love. Okay.
11: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
5: Listen back to your favourite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
12: और मेरे भाइयों, अगला गीत हमें लेकर चलेगा 12 बजे की खबरों तक. पर मैं उधर जाते हुए एक ये मधुर गीत या मधुर धुन, एक मधुर ट्यून या फिर एक नया मधुर साज, अब तो नया नहीं है पर उस जमाने में ये बिल्कुल नया था जब ये गीत बना 1954. फिल्मी दुनिया में एक फिल्म बन रही थी नागिन, और इसके संगीतकार हेमंत कुमार साहब को एक ऐसी अनोखी धुन की तलाश थी जो सांप की बीन की जैसी आवाज लगे. अब भाई हमारे देशराज बैसन साहब जो है ये ढूंढ कर खोज कर ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं. और भाई अब धन्यवाद के साथ हम आपको बता रहे हैं कि एक वाद्य यंत्र ईजाद हुआ था उन्हीं दिनों फ्रांस में, नया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, नाम था उसका क्लेवियोलिन. वायलिन तो आपने सुने लेकिन क्लेवियोलिन हेमंत कुमार के साथ काम कर रहे एक नौजवान संगीतकार ने इस बिल्कुल नए और अनजान इंस्ट्रूमेंट को हिंदुस्तानी सिनेमा में सबसे पहले इस्तेमाल करने का साहस दिखाया. उन्होंने इसी क्लेवियोलिन पर वो मशहूर धुन बनाई जो दुनिया भर में भाई हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, मेगा हिट, नागिन बीन नाम से ये धुन. भाई इसमें जो क्लेवियोलिन तो बजा रहे हैं कल्याण जी, वीर जी शाह, और साथ में हारमोनियम पर है संगीतकार रवि, और भाई संगीतकार हेमंत कुमार की उसमें क्या कहें, उनके साथ जो है नागिन फिल्म का संगीत देते हुए उन्होंने ये धुन बजाई, बनाई और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई ये धुन. कल्याण जी भाई की पुण्यतिथि है, श्रद्धा से नमन करते हैं उस महान संगीतकार को।

उन दिनों हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह, रवि भी उनके असिस्टेंट थे, लेकिन बाद में कल्याण जी वीर जी शाह ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया।

0: विल यू मैरी मी, नो बेबी। जहां भी कोई हैंडसम लड़का दिखाई दिया गाना शुरू कर दिया विल यू मैरी मी। खाली नहीं है इतने, हम अभी तो पढ़ाई चल रही है। अब वो पूछती है अभी पढ़ाई चल रही है तो मैं क्या तुम्हारी किताबें फाड़ती हूं? भाई बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम आ गए हैं अब इस पड़ाव पर। याद दिला दूं आपको कि कंपटीशन का हमने जिक्र किया था, बस समाचारों के नजदीक थे, लेकिन आपने तो इतने समझदार हैं आप लोग कि क्या भेजना है क्या लिखना है सब कुछ नोट करके भेजना शुरू कर दिया। कितने लोग ऑलरेडी जो है एंट्री कर चुके हैं कॉम्पिटिशन में। तो भाई फिर बता दूं कि आपने जिन्होंने भेजी है थैंक यू वेरी मच। एक कोई विनर होगा और वो अनाउंस नहीं करूंगा मैं क्योंकि वो आगे अनाउंस करेंगे, लेकिन एक विनर आज जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका वो नाम चला जाएगा फाइनल उसके लिए ड्रॉ के लिए। तो जिन लोगों ने भेजे हैं जिन वो का धन्यवाद। जो अभी भेजना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि आपको एक तो लिखना है जेमिन आई लव यू, हाँ आई लव जेमिन ये ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा आई लव जेमिन ये लिखने के बाद अपना नाम अपना फोन नंबर अपना ईमेल एड्रेस और अपना होम एड्रेस भी, क्योंकि आपको वो जो इनाम है वो घर के एड्रेस पर डिलीवर कर किया जाएगा। तो कृपया अपना नाम अपना फोन नंबर अपना ईमेल एड्रेस और अपना जो फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। तो साहब ऑल द बेस्ट, ये लाइका रेडियो नेटवर्क है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK and State Bank of India UK. ऑफर कर रहे हैं भाई, रेट अच्छा चल रहा है बता दूं आपको। अगर आज आप पैसे भेजते हैं तो SBI UK वाले दे रहे हैं एक पाउंड के बदले हाउ मच 130 रुपीज एंड 10 पैसे 130 रुपए और 10 पैसे वो एक पाउंड के बदले दे रहे हैं। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है
3: Leica Radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 रुपीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 KG still 10.99.
6: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Lister LE12JU and 2A Rollout Cell Lister LE54UN.
7: Location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: It's back and it's bigger.
10: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
9: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
10: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
9: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
11: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
14: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा? Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. That's 02037736333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
16: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भैनों भाइयों, आप जानना चाहेंगे कि इस सप्ताह का आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट ऑफ द वीक. भाई कोई गीतकार, संगीतकार, गायक कलाकार, कोई अभिनेता अभिनेत्री कौन हो सकता है? भाई मैं अगर आपको सरनेम बताऊं तो वो है मिस्टर श्रीवास्तव. अब श्रीवास्तव तो अमिताभ बच्चन भी हैं. श्रीवास्तव तो भाई संगीतकारों में देखें तो हमारे वो एक बड़े प्यारे मित्र थे, वो भी थे. चलो उनका नाम नहीं बता ही दिया आपको. भाई श्रीवास्तव से नहीं पता लगेगा क्योंकि जो उनका मशहूर नाम है और जो उनकी धुनों के लिए जिम्मेदार है वो नाम फिल्मों में जो चलता है वो नाम है चित्रगुप्त.

0: तलत महमूद की आवाज में ये गीत भाई चित्रगुप्त ने संगीतबद्ध किया था। चित्रगुप्त अपने दौर के महान संगीतकार और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं भाई उनके दो सुपुत्र जो हैं होनहार बेटे आनंद और मिलिंद। आनंद मिलिंद की धुनें भी बड़ी शानदार और कामयाब धुनें नई फिल्मों में आ रही हैं। हम उनकी तो नहीं बजा सकते फिल्मों की धुन क्योंकि वो नेचुरली 2000 से पहले की नहीं होंगी, लेकिन चित्रगुप्त साहब की बनाई धुनों पर आधारित गीत पूरे सप्ताह गूंजेंगे क्योंकि चित्रगुप्त इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: Brought to you by Dairy Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

देखने का काम नहीं है, सुन ले और ध्यान से सुन ले। कंपटीशन चल रहा है भाई, विनर का नाम मैं अनाउंस करूंगा, और लेकिन विनर का मतलब विनर चुना जाएगा उनमें से जो लोग पूरी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। यानी पहले तो लिखिएगा आई लव जेमिन, और उसके बाद अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस भी आपके घर का, जहां पर आप डिलीवर कराना चाहते हैं अवार्ड।

वही लोग सावन का नाम तो याद रखे हुए हैं लेकिन भूल गए ये छतरी क्या होती है, क्या होती है छतरी? अरे कभी बरसेगा, जरूरत महसूस होगी तो पता लगेगा छतरी क्या होती है। सावन

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रेवल का वो निमंत्रण भाई, वो मीठा सा संदेश जो है, वह फिर याद दिला दूं आपको कि दे आर एक्सपर्ट फॉर दुबई डील्स भाई, बड़े मशहूर हैं। हॉलीडे के लिए अगर दुबई जाना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट साउथहॉल ट्रेवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथहॉल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybourne Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
1: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.

0: Nautsaplas, Abhe Stoplas.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: हाँ, ये अब कुछ एक और भाई शूरवीरों को याद कर ले, उन योद्धाओं को जिनका देश की आजादी में योगदान। मैंने आपको बता दिया ना कि आज राजगुरु का जन्मदिन पड़ता है, वो जो फांसी का फंदा चूम कर हंसते हंसते झूल गए थे भगत सिंह और सुखदेव के साथ। लेकिन उनके अलावा भाई कुछ और पॉलिटिशियंस का भी आज या तो जन्मदिन या फिर पुण्यतिथि पड़ती है, जैसे कि अरुण जेटली। ये नाम बहुत पुराना नहीं है, आपको याद होगा इनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम भी है अब दिल्ली में। इनकी आज पुण्यतिथि है क्योंकि ये 24 अगस्त 2019 में इनका निधन हो गया था। इसके अलावा एक नेता हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, सिकंदर बख्त। इनका जन्म हुआ था 1918 में, वो भी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन भाई वो भी पार्टी के एक बड़े नेता थे। सिकंदर बख्त उनका जन्मदिन होता है। और भाई बाकी शिवराम राजगुरु के बारे में मैंने बता दिया। इन सब के लिए अगर कोई गीत समर्पित करें तो कौन सा गीत होगा जिसमें मस्ती भी हो, यादें भी हो, देशभक्ति भी हो।

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
4: Leicester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Laika Radio.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
10: भोजपुरी बवाल।
11: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
12: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
13: कहां सही झगड़ा चला था भाई?
14: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो Bhojpuri Pawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV. Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
15: Cutthroat Ke Khiladi. Manoranjan with Ravi Sharma.
16: और बहन भाइयों, मनोरंजन कार्यक्रम को समेटने से पहले मुझे बताना है आपको विनर का नाम। भाई वो जेमिन वाले जिसको भेजेंगे वो उपहार, वो गिफ्ट पैक, तो कौन है वो? लेट मी टेल यू, आज के मेरे जेमिन कंपटीशन में द विनर इज उनके फोन नंबर में आखिर में आता है 699 एंड हिज नेम इज विजय। विजय जी की विजय हुई है। और बहनों भाइयों, बाली भाई आ रहे हैं, और भी बहुत सारे कंपटीशन होंगे हमारे कार्यक्रमों में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पर जाते जाते एक बात कहूं कि दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज उनको जाने ना दो। एक बात कह देते हैं, सुन लो ध्यान से, हम भूल गए तो तू याद करेगा। अब खुद ही देख लेना मेरे दिल के सबर को, तड़पेगा, रोएगा, फरियाद करेगा। तो रोक लो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज तुम उनको जाने ना दो।

0: एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, द लेगेसी कैरीज ऑन, वी आर रिमेम्बरिंग कल्याण जी वीर जी शाह एंड द लेगेसी कैरीड ऑन विद नन अदर देन विजू शाह. अब 26th डेथ एनिवर्सरी ऑफ कल्याण जी भाई, बॉर्न इन कच्छ, एवरीबडी नोज दे मूव्ड वीर जी शाह, इनके पिताजी, द होल फैमिली मूव्ड टू बॉम्बे टू ओपन अ प्रोविजन स्टोर. फिर वहां से कहानी शुरू होती है और सबसे पहले कल्याण जी भाई ने म्यूजिक डायरेक्शन शुरू किया था और उन्होंने कुछ चार एक फिल्में जो थी 1958 और 59 में जो जिसका म्यूजिक दिया था, जिसके बाद फिल्म सट्टा बाजार और मदारी से और छलिया से आनंद जी भाई ने ज्वाइन कर लिया उनको. तब तक वो असिस्टेंट थे. कल्याण जी वीर जी शाह की जो फिल्में, सोलो फिल्में जो थी वो थी सम्राट चंद्रगुप्त 1958, पोस्ट बॉक्स नंबर 999 की, बेदर्द जमाना क्या जाने 1959, ओ तेरा क्या कहना 1959. अब मैं सेकंड आवर में आपको वो गाने सुनाऊंगा जो इनकी सोलो फिल्म्स के थे और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड आवर मैं आपको वो गाने सुनाऊंगा जब आनंद जी भाई ने कल्याण जी भाई के साथ जुड़कर इन्होंने दो तीन फिल्में जो की थी बिगिनिंग में. फिर उसके बाद तो इस आवर में जो मैं गाने सुना रहा हूँ वो सब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दौर आया जबकि कल्याण जी और आनंद जी इन्होंने हंगामा कर दिया. व्हाट दे डिड वाज द ड्यूओ कल्याण जी आनंद जी दे एम्ब्रेस्ड वेस्टर्न फंक म्यूजिक एंड देन यू कैन से सिंथ रॉक डिस्को म्यूजिक. उसमें उन्होंने ऐसा हाथ मारा और पूरी इंडस्ट्री बॉलीवुड का नक्शा चेंज कर दिया म्यूजिक का. इनका इन्फ्लुएंस था एक टीनेजर का, वो टीनेजर का नाम था विजू शाह जो कल्याण जी के बेटे हैं. विजू वॉज वेरी टेक्नो सेवी, सो उसने सिंथेसाइजर और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और डिस्को म्यूजिक, सिंथ रॉक, ये सब म्यूजिक उनके उसकी फेवरेट कीबोर्ड्स थे रोलैंड और कॉर्ग जो कीबोर्ड्स थे उसमें से साउंड्स निकाल कर. फिर तो बाद में ऑफ कोर्स ही डिड हिज ओन फिल्म्स जैसे कि गुप्त और त्रिदेव और विश्वात्मा मोहरा जैसी फिल्में विजू शाह ने की. लेकिन द मेजर इन्फ्लुएंस जब 1970s और 80s में जब डिस्को म्यूजिक का एक दौर शुरू हुआ, डिस्को एंड फंक एरा ऑफ कल्याण जी आनंद जी, ब्लेंडिंग ब्रासी बिग बैंड हॉर्न्स विद डिस्टोर्टेड वावा गिटार्स टू चेंज द साउंड ऑफ बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर्स. जितनी भी एक्शन थ्रिलर्स थी जैसे कि डॉन, उसका संगीत इन्होंने इतना अच्छा बनाया एंड फिरोज खान वॉज वेरी हैप्पी. जबकि फिरोज खान की फिल्में, जांबाज जैसी फिल्में और कुर्बानी जैसी फिल्में, कल्याण जी आनंद जी ने ऐसा संगीत दिया कि चार चांद लग गए. आज भी वो संगीत सुनाई देता है. मैंने आपको कुर्बानी फिल्म का गाना हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जहां पे ऑफकोर्स मनहर उदास की एंट्री जब हुई तब दैट वॉज यू कैन से द क्रेडिट गोज टू कल्याण जी आनंद जी. बट ये गाना मनहर उदास, कंचन, उन्होंने सबने गाए और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने. फिल्म हादसा जब अमित कुमार ने गाया, ये बम्बई शहर हादसों का शहर है. उसके बाद मैं और गाने सुनाऊंगा ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एरा ऑफ कल्याण जी आनंद जी और सेकंड आवर में द सोलो फिल्म्स ऑफ कल्याण जी भाई एंड व्हेन बोथ ऑफ देम जॉइंड हैंड्स टुगेदर. सो सुनते रहिएगा, कुछ राग आधारित गीत भी है सेकेंड आवर में. यू आर गोना गेट अ रियल ट्रीट ऑफ द ट्रिब्यूट टू कल्याण जी वीर जी शाह इन द फर्स्ट एंड सेकेंड आवर्स. He was active from 1954 to 2000. That was for 46 years out of his 72 years. He passed away on 24th of August 2000, 26 years ago. So, main hoon Bali Brahmbhatt on Laika Gold with Gold Afternoons, doing a tribute of Kalyanji Veerji Shah. Sunte rahiyega, lutf uthate rahiyega. The show is sponsored by, of course, Jaimin Foods. And Midlands walon ko mera bahut bahut namaskar. 412th day of Laika Radio Midlands, jo 1st July 2025 se shuru hua. So, meri awaaz wahan tak bhi pahunchti hai. Waise to duniya bhar mein pahunchti hai, lekin मिडलैंड्स वाले मुझे काफ़ी मैसेजेस भेजते रहते हैं. थैंक यू फॉर योर लवली मैसेजेस ऑलरेडी कमिंग इन बाय रमा पटेल फ्रॉम अहमदाबाद एंड संध्या भाउसर, मनु, राजीव पटेल, सुनीता शर्मा एंड देन हमारे ट्रक वाले M6 पे जो म्यूजिकल M6 बना दिया जिन्होंने विद फुल वॉल्यूम इन इस ट्रक इज ऑफकोर्स पवन नेहरा जी. And then Vijay Godori, who's been walking so much today. I think he's done about 7.4 kilometers. So he deserves a good drink and a sandwich. And Hasumati ji, thank you. Bharat Gangaram ji, as always, aapke liye ek geet maine chuna hai is hour mein. Nazia Shakil ji, Kapil from Watford. Pammy Singh ji, as always. And Aruna and Bhupendra Patel. Arjun ji, thank you. Thank you very much for your messages.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to, let's see the latest rate here, 130.1. 130.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: One performer.
4: TV के सामने थोड़ा सा कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी.
5: Countless personalities.
6: जिंदगी बर्बाद हो गया.
1: A whole universe of entertainment.
7: Nanana function रखा हुआ है.
8: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
8: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
6: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.
13: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: And this song for, of course, Bharat Gangaram Ji, film Dawn.
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.
0: This was South की एक फिल्म थी, उसमें से ये गाना बना था.
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए.
0: Original music था, composition इलैया राजा.

0: बोस
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
0: महाराज
1: यस
0: योगी
1: दैट्स राइट
0: वेलकम
1: थैंक यू
0: स्वागत है।

0: यस ये संगीत आप सुन रहे हैं, दिस वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय नन अदर देन कल्याण जी आनंद जी, मन डोले तेरा तन डोले. दिस वॉज द क्ले वायोलिन. क्ले वायोलिन लोग समझते हैं कि मस्ट हैव बीन एन इंस्ट्रूमेंट मेड आउट ऑफ क्ले, लेकिन वो बात नहीं थी. क्ले वायोलिन इज CLAVIOLIN. क्ले वायोलिन इज अ यू कैन से रेयर अर्ली फ्रेंच वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ. तो असिस्टेंट कंपोजर ऑफ हेमंत कुमार रवि एट दैट टाइम द म्यूजिक डायरेक्टर रवि वॉज असिस्टिंग हेमंत कुमार जी एंड ही हैड वर्कड आउट एन इंडियन यू कैन से अ फोक मेलोडी ऑन हारमोनियम फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग मन डोले तेरा तन डोले. लेकिन कल्याण जी भाई एक्सिक्यूटेड द अरेंजमेंट ऑन हिज क्ले वायलिन मिमिकिंग the continuous, you know, the nasal sliding pitch variations of the real bean jo aata hai teena neena neena neena bean pe jo bajate hain saap ko attract karne ke liye. To yahi sound inhone clay violin mein se nikala tha. So we are talking about none other than Kalyan ji Veer ji Shah on his 26th death anniversary. All I can explain to you about is, you can say, how shall I put it? इन्होंने जो चार फिल्में जो की थी, अब मैं समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं एक गाना ढूंढ रहा था लाइब्रेरी में, तो मेरा ध्यान वहाँ भी था और आपके तरफ भी था. सम्राट चंद्रगुप्त, फिर पोस्ट बॉक्स नंबर 999, फिर बेदर्द जमाना क्या जाने एंड ओ तेरा क्या कहना. तो मैंने जो दो गीत आपको सुनाए वो फ्रॉम पोस्ट बॉक्स नंबर 999, उसमें ऑफ कोर्स कल्याण जी भाई सोलो थे एंड पीएल संतोषी ने लिरिक्स लिखी थी एंड दूसरा सम्राट चंद्रगुप्त, उसमें भरत व्यास ने गाना लिखा और गाना था चाहे पास हो चाहे दूर हो. रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी को इन्होंने गवाया था डूइंग द सोलो फिल्म्स एंड लेटर ऑन आनंद जी भाई जॉइंड. सो अब मैं आपको जो गीत सुनाता हूँ वो सब है सोलो सॉन्ग्स ऑफ कल्याण जी भाई. एक गाना जो स्टार्टिंग में नींद ना मुझको आए, राग यमन कल्याण में उन्होंने कंपोज किया था, और दूसरा एक गाना था चाहे पास हो, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कौन से राग में था, आई कॉन्ट फिगर आउट, पर अगर याद आ गया तो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन नेक्स्ट सॉन्ग ऑब्वियसली इज गोना बी बेदर्द जमाना क्या जाने. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, रिमेम्बरिंग कल्याण जी वीर जी शाह ऑन हिज 26th डेथ एनिवर्सरी. द शो गोज to Midlands and in Greater London. Not only that, I can also say that this show, Gold Afternoons, is sponsored by Jaimin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 130.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Jaimin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: जिंदगी बर्बाद हो गया.
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
3: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
6: high appreciation.
7: In Dubai.
8: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HartyHanks.com now. Harty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HartyHanks.com now.
13: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: And Kalyanji Veerji Shah doing solo films with the lyrics of Bharat Vyas. वो थी फिल्म बेदर्द जमाना क्या जाने. इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशंस इन्होंने बनाई थी, लेकिन आगे जाते हुए जब दोनों भाइयों ने हाथ मिला लिए तो और भी बढ़िया कॉम्पोजिशंस और म्यूजिक आने लगा. नेक्स्ट गाना जो होगा दैट विल बी ओ तेरा क्या कहना. दैट वाज अ सोलो फिल्म बाय कल्याण जी भाई एंड लिरिक्स वर रिटन बाय इंदिवर. इतना खूबसूरत गाना है. जो सिंगर जिनकी आवाज़ हेमंत कुमार के साथ मिलती है, विजय गुडोरी नोज, इट्स सुबीर सेन एंड कमल बारोट, उन्होंने गाया है ये गीत. सुनते रहिएगा. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ कल्याण जी वीरजी शाह 26th डेथ एनिवर्सरी. यूजुअली कल्याण जी वीरजी शाह की जब एनिवर्सरी आती है तो वी ऑल प्ले जस्ट कल्याण जी आनंद जी के सब गीत बजाते रहते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द म्यूजिक दैट कल्याण जी भाई हैड डन सोलो ऑन हिज ओन. सो कुछ गाने मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद दोनों भाई हाथ जोड़कर मतलब दोनों ने दे जॉइंड हैंड्स टुगेदर इफ आई ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश एंड दे डिड सॉन्ग्स ऑफ फिल्म मदारी, छलिया. ओ माय गॉड, क्या म्यूजिक निकला. सुनते रहिएगा.
0: ये है लाइका रेडियो.
3: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
2: अ फिल्म दैट कल्याण जी भाई डिड ऑन हिज ओन सोलो. ओ तेरा क्या कहना, दिल लेके जाते हो कहां.

0: यस ओ तेरा क्या कहना। अब कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया कि आपने बोला कि म्यूजिक डायरेक्टर रवि वाज़ द असिस्टेंट ऑफ हमारे हेमंत कुमार, जबकि असिस्टेंट तो कल्याण जी भाई थे जिन्होंने वो नागिन में वो क्ले वायलिन का पीस बजाया था। इसी बात ऐसी होती है कि मैं आपको कुछ बताता हूँ। हेमंत कुमार डिस्कवर्ड रवि, म्यूजिक डायरेक्टर रवि, इन 1952 एंड इनिशियली हायर्ड हिम एज अ कोरस और बैकिंग वोकलिस्ट फॉर द पेट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम इन द फिल्म आनंद मठ। फिर क्या हुआ, हेमंत कुमार वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई रवीज टैलेंट एंड नॉलेज ऑफ उर्दू, तो हेमंत कुमार ब्रॉट हिम ऑन एज अ म्यूजिक असिस्टेंट। अब उन्होंने कौन सी फिल्में की थी एज असिस्टेंट, हेमंत कुमार के असिस्टेंट रवि जिन्होंने फिल्में की थी सम्राट, शर्त, जागृति, चंपाकली एंड द मासिव हिट नागिन। अब ये नागिन में जो गाना था मन डोले मेरा तन डोले, उसमें रवि जी ने म्यूजिक हारमोनियम पे सजाया हुआ था अंटिल ऑफ कोर्स कल्याण जी भाई केम विद हिज क्ले वायलिन एंड ही डिड द म्यूजिक फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। सो आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि असिस्टेंट थे रवि और म्यूजिकली देखा जाए तो कल्याण जी भाई ने ज्वाइन करके उनको क्ले वायलिन पे ये म्यूजिक बजा के दिया था एंड दे ऑल्सो वर एट वन पॉइंट असिस्टिंग हेमंत दा। सो कल्याण जी आनंद जी की बात करूं तो बहुत लंबा सिलसिला बन जाएगा, लेकिन आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दिस फैक्ट के द म्यूजिक डायरेक्टर रवि वॉज द असिस्टेंट टू हेमंत कुमार ड्यूरिंग दैट फिल्म मेकिंग ऑफ नागिन। ओके विजय गोडोरे जी, यस यस आपने ये सवाल उठाया था, सवाल तो नहीं उठाया था बट यू सेड के ये बात पे, तो आई होप द मैटर इज क्लियर विद यू।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स। हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथहॉल ट्रैवल।
0: Oh yes, Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Like an extra podcast update.
0: Okay, we've reached podcast episode number 30. The title is British Asian Trust Showcase, hosted by Deep Raja. Deep Raja speaks to Hitan Mehta, OBE, Chief Executive of the British Asian Trust, about the organization's work. So, like our extra podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Leica Radio.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 KG sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
5: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
9: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: Nook Jhook, Secrets, Unlimited Ladai aur Unlimited Baatein. Duniya ke sabse anokhe is bhai-behen ke rishte ko saalon saal meetha banata Rakhi ka tyohar. Celebrate kare apno ke saath. Aur saath saath Jamin Foods ki ethnic Indian variety bhi. Jahan hai khakra, namkeen, bhakri, chikki, son papri, pickles aur bahut kuch.
13: Available at ethnic grocery store near you. Jamin Foods wishes you all a very happy Raksha Bandhan.
14: आपका अपना टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
0: Laika Gold is doing a tribute of Kalyanji Veerji Shah. This is film Satta Bazaar with Anandji Bhai.

So, किसी ने सवाल पूछा कि दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे क्या, मतलब रवि और कल्याण जी भाई? तो हाँ, जवाब है हाँ। दोनों ने हेमंत दा के साथ काम किया था फिल्म नागिन में एज असिस्टेंट्स। हारमोनियम पे थे रवि और क्ले वायलिन पे थे

0: 89.36. We got Kenyan shillings 176.64 and Mauritian rupees 63.66.
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. L-Y-C-A. This is Leica. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £110 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. Are you listening? Leica Radio is now available across Derbyshire on DAB. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी
1: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच वीक दैट्स 80 मिलियन ईयर्स गिव अ टेक Amplify your advertising at radiocentre.org.
2: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. This is Leica Radio across the Midlands.

0: फिल्म है मदारी, जब दोनों भाइयों ने साथ में काम किया, कल्याण जी आनंद जी।
1: बैक टू बैक हिट्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क।
0: दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ कल्याण जी आनंद जी, फिल्म सफर। यस, फिरोज खान वैसे तो राजेश खन्ना, लेकिन इस गाने के लिए इंदिवर जी ने लिरिक्स लिखे।

मेरा प्यारा दोस्त मच्छी यानी कि सुरेश शर्मा, डॉक्टर सुरेश शर्मा, उनकी वाइफ सुलक्ष, हमारी भाभी जी का बर्थडे है आज. सो द नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम सुरेश टू सुलक्ष जी, हमारी भाभी के लिए. फिल्म है पारस, मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने गाया है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक मुकेश जी और सुलक्ष जी, हमारी भाभी जी, वो दोनों गाएंगे ये. तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, हैप्पी बर्थडे.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
3: पूछ ही लो सर।
2: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
3: फरवरी सर।
4: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
5: India ke top 1% starts this September on Star Plus.
2: India ke top 1% sirf degree nahi, dimag bhi jeetega.
1: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hit.
6: Ye hai Leica Gold.

गई। यार के हंसते ही महफिल पे जवानी आ गई। वहाँ पे बर्थडे केक काटा जा रहा है जेके का। थैंक यू रमा जी, आपने बताया जेके का बर्थडे है। 84 इयर्स यंग टुडे, हैप्पी 84th बर्थडे जेके। यारी है ईमान, मेरा यार मेरी जिंदगी। मेरे यार हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे टू द फुलेस्ट। बड़ा प्यारा केक है।

0: ते पहुंचेंगे
1: करफिदा
0: जान को
1: मार ले
0: मैदान को
1: रोक ले
0: बांध दिया
1: मोर दे
0: तूफान को
1: हिम्मत कभी न तोड़ेंगे
0: दुश्मन को न छोड़ेंगे
1: घुटने कभी न टेकेंगे
0: मुड़ के ना हम देखेंगे
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: दुनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
2: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation.
3: In Dubai.

0: cash and carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald plastic.com.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410, दैट्स 8574 8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
0: लेस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर। 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट 5 pounds। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल बीचेस 0795747330। मस्ती, म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: Yeh hai Like a Go.

0: Okay, so the next hour is Radio Wally's Monday Motivator. So there's a song you definitely want to listen to. One that's going to boost you and get you through to the week. So message me and let me know. And I may play it. Of course, this is Doom 2. Crazy Kiare. This is Radio Wally's Roller Coaster. But Annika's driving today.
1: Like a radio. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Kuch shaam ek calendar mein nahi, dil mein hamesha ke liye bas jati hai. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. सैटरडे द 5th ऑफ सितंबर एट द प्लैटिनम सुइट लेस्टर. अपनी सीट्स आज ही रिजर्व कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मिस्टर बी ऑन 07860280655. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Bhojpuri Bawal.
3: Pawan ji, maine suna hai. आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है.
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो.
5: कहाँ सही झगड़ा चला था भाई.
2: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी पवाल मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी.
6: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड. एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
7: The biggest Asian love songs with Love Sound on Leica Radio Midlands. Radio Wally, with the biggest hits for your weeknights on Leica Radio. This week's number one on the Leica Chart Show. Tune in every Friday with Annika at 6 PM on Leica Radio, Greater London.

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Bollywood romantic hits throughout the night.

0: got no surplus of her stop loss.
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
2: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
1: The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11, 11.
6: Call the Danube Properties London office today on 02 03.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल्ड 2।
2: भोजपुरी बवाल।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: कहाँ सही झगड़ा चला था भाई।
2: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
6: Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.